आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांव से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और

अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। ये यात्रा 7 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को समीप से समझने का अवसर देती है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान के प्रति अपने स्पष्ट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के से अलग दो राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि भारत राजनीतिक समर्थन के साथ व्यवहारिक सहयोग पर भी बल देता है। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। उन्होंने कहा कि देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4था संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीददारी की शुरुआत यहीं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पद की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि

0: देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी सात धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
2: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
3: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
2: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
4: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए

0: केंद्र बन रहा है। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
2: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेवल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
3: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, आईटी, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
4: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीकी ई बस सेवा से लगाकर के सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जन कल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
5: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
6: जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या

0: 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, लोक सत्य में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमरीका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनपिंग से मिलकर काम करने का वादा।
1: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। 4वां यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना बागी फिल्म का गाना, आवाजें अरमान मलिक, श्रद्धा कपूर और अमाल मलिक की, गीतकार संजीव चतुर्वेदी और संगीतकार अमाल मलिक।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
2: यादों की बारात निकली है आज
1: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
3: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
1: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
4: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो, बन सारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
6: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया।
5: दुबई बानी कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में ले के टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
6: आ रहे हैं विविध भारती पर।
7: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
6: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मना रहे हैं। वे चिंतक, लेखक, पत्रकार, संगठनकर्ता और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में रहे। दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में एकात्म मानववाद और अंत्योदय को विशेष स्थान प्राप्त है। एकात्म मानववाद में उन्होंने मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को एक समग्र इकाई के रूप में देखने की बात रखी। वहीं अंत्योदय का आशय समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान से जुड़ा है। आइए सुनते हैं भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का ये गाना।

अभी आपने सुना जो गाना उसे गाया अरिजीत सिंह ने, बोल मनोज मुंतशिर के और संगीतकार आर को। लीजिए सुनिए अगला गाना।

अभी आपने सुना फिल्म एजेंट विनोद का गाना, जिसे आवाज दी अरिजीत सिंह ने, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम। अब समय हो चला है एक अंतराल का।

अभी आपने सुना फिल्म कबीर सिंह का गाना, जिसे गाया अरिजीत सिंह ने। गीतकार और संगीतकार थे मिथुन। आइए सुनते हैं चितलो कार्यक्रम का अगला गाना।

0: कॉलेज कैंपस फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना, जिसे सुनिधि चौहान ने गाया, गीतकार साहिल सुल्तानपुरी और संगीतकार अतुल।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज के
0: द्वार। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी को मेरा नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट द फन।
0: दोस्तों आज के प्रोग्राम में फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक एस पी बाल सुब्रमण्यम।

0: शिवम सुंदरम।
1: 1981 की फिल्म एक दूजे के लिए अपने सुपरहिट गीत और संगीत के लिए भी जानी जाती है। इस फिल्म के गानों में अपनी आवाज देकर एसपी बाल सुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए अपना दूसरा नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इसके पहले 1980 में एसपी बाल सुब्रमण्यम को डायरेक्टर के विश्वनाथ निर्देशित तेलुगु फिल्म शंकरा भरणम के लिए भी अपने बेहतरीन गायन के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पहला नेशनल अवार्ड मिल चुका था और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर सिंगर ख्याति पा चुके थे।

4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मूलापेटा में जन्मे एसपी बाल सुब्रमण्यम का परिवेश पूरी तरह से संगीतमय था। उनके पिता एक हरि कथा कलाकार थे और उन्होंने कई मंचित नाटकों में भी काम किया था। एसपी बाल सुब्रमण्यम की बचपन से ही संगीत में रुचि थी। यही वजह थी कि उन्होंने छोटी उम्र में ही हारमोनियम और बांसुरी बजाना सीख लिया था। हालांकि इंजीनियर बनने की चाहत में एसपी बाल सुब्रमण्यम ने अनंतपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया, लेकिन स्टडी के दौरान बीमारी की वजह से रुकावट भी आई, मगर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और इसी दौरान 1964 में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेकर अवार्ड भी जीता।

0: गायन का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर एसपी बाल सुब्रमण्यम प्रोत्साहित होते रहे, आगे बढ़ते रहे और बाद में एक लाइट म्यूजिक ट्रुप के प्रमुख गायक बन गए। उस दौरान गिटार और बाद में बांसुरी पर उनका साथ दिया करते थे संगत के रूप में इलैया राजा, जो बाद में संगीतकार भी बन गए।
1: वो तो बना

दोस्तों एसपी बाल सुब्रमण्यम की फिल्मों में गायन की शुरुआत 15 दिसंबर 1966 में एक तेलुगु फिल्म से हुई। ये फिल्म थी श्री श्री श्री मर्यादा रामन्ना। उसके चंद दिनों बाद 1966 में ही कन्नड़ फिल्मों के लिए और 1969 में तमिल फिल्मों के लिए भी अपने गायन की शुरुआत करके एसपी बाल सुब्रमण्यम चर्चा में आ गए।

अपने दौर के दिग्गज कलाकारों जैसे जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन की आवाज बनकर उभरे। एसपी बाल सुब्रमण्यम को जी देवराजन ने मलयालम फिल्मों के लिए भी गायन के लिए इंट्रोड्यूस किया। एसपी बाल सुब्रमण्यम उन दिनों साउथ में अपने गायन के चरम पर थे। व्यस्तता का आलम यह था दोस्तों कि 1981 में 8 फरवरी को 12 घंटे की अवधि में कन्नड़ भाषा में 21 गाने गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बाद में तमिल में एक दिन में 19 और हिंदी में भी 16 गीत एक ही दिन में गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया।

उस दौर की साउथ की जानी मानी फीमेल सिंगर्स जैसे पी सुशीला, एस जानकी, वाणी जयराम और एल आर ईश्वरी के साथ भी एस पी बालसुब्रमण्यम की बेहतरीन ट्यूनिंग रही और उन्होंने तमाम युगल गीत गाए। आगे चलकर महान संगीतकार बने इलैया राजा के साथ एस पी बालसुब्रमण्यम का जुड़ाव बहुत पहले से रहा है, जब इलैया राजा उनके ऑर्केस्ट्रा ट्रुप में महज हारमोनियम और गिटार वादन किया करते थे। उनका ये जुड़ाव बाद में बना रहा और कई गीतों को रचकर और भी पक्का हो गया। 1989 में एस पी बालसुब्रमण्यम ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अपनी आवाज दी। फिल्म थी मैंने प्यार किया। फिल्म के साथ साथ गानों ने भी धूम मचा दी थी। इस फिल्म के दिल दीवाना गाने के लिए एस पी बालसुब्रमण्यम को फिल्म फेयर के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

बाद में सलमान खान के लिए ही एसपी बालसुब्रमण्यम ने हम आपके हैं कौन फिल्म के गाने गाए, जो सुपर डुपर गीतों की श्रेणी में शामिल हो गए।

दोस्तों यहाँ काबिले जिक्र है कि एसपी बाल सुब्रमण्यम को कई लोग बतौर गायक ही जानते हैं, जबकि वो एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वॉइस एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, के भाग्यराज, मोहन, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड, जेमिनी गणेशन, अर्जुन सरजा, नागेश, कार्तिक, रघुवरन जैसे हिंदी और साउथ के तमाम कलाकारों के लिए साउथ की विभिन्न भाषाओं में वॉइसिंग भी कर चुके हैं एसपी बालसुब्रमण्यम। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गीत गाने वाले एसपी बालसुब्रमण्यम को अब तक 6 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एक दिन में अधिकतम गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से तेलुगु सिनेमा का नंदी अवार्ड्स लगभग उन्हें 25 बार हासिल हो चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के और भी कई अवार्ड्स हासिल कर चुके एसपी बालसुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा सन 2001 में पद्मश्री और सन 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन एसपी बालसुब्रमण्यम अपने सबसे बड़े अवार्ड को मानते हैं अपने प्रशंसकों की गुनगुनाहट के जरिए, वो जो उनके गीत गुनगुनाकर खुशियों में डूबे रहते हैं।

दोस्तों, एसपी बाल सुब्रमण्यम एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। उनकी पत्नी हैं श्रीमती सावित्री, एक बेटी है पल्लवी और एक बेटा है एसपी बी चरण, जो खुद भी पार्श्व गायक और फिल्म प्रोड्यूसर है। एसपी बाल सुब्रमण्यम ने फिर से एक बार हिंदी की ओर शुरुआत की 2013 में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए भी पार्श्व गायन करके। संगीतकार विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में उन्होंने ये गीत गाया।

0: सिंह, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, और अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: సమయం 12 గంటలు కొన్ని క్షణాల్లోనే వార్తలు వింటారు.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है. श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े. उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं.
2: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा. और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है. अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है.
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है. गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है. उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया.
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है. ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद. आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है.
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है. विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की. इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई. एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साखना के साथ बैठक में यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभाव तथा बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की. नई दिल्ली में परियोजना के शुभारंभ पर श्री यादव ने कहा कि इससे राज्य वन संस्थानों में नई सुविधाएं विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा. सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में कल रात मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं. मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है. श्री तमांग ने स्थानीय अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है. मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है. वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया. भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है. इससे पहले मुक्केबाज सचिन सेवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया. भारत अब 19 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम सबकी जिंदगी

0: साझा करें और शायद उन बातों में से किसी की एक छोटी सी बात किसी दूसरे के दिन को बेहतर बना दे। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आपका साथ, आपकी आवाज और आपकी बातें इस कार्यक्रम को बनाती हैं खास। तो देखते हैं जिस खूबसूरत सफर का हमें था इंतजार, उसकी शुरुआत आज कौन से शहर से हमारी कौन सी सखी करने वाली है, इसका पता करते हैं फोन की इस पहली कॉल से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मध्य प्रदेश से अंजुम परवीन, मंदसौर जिले से।
0: अच्छा, तो अंजुम जी बताइए कुछ अपने बारे में, बताएंगे आप पहले?
1: बस हाउस वाइफ हूँ, घर पे ही रहती हूँ। पेरेंट नर्स का कोर्स कर चुकी हूँ, हॉस्पिटल में सर्विस।
0: अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो और अच्छा ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है, परिवार में?
1: जी मम्मी है, बहन है।
0: ये बताइए कि आप मम्मी के काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाती हैं कि नहीं, या फिर मम्मी गुस्सा करती हैं?
1: नहीं नहीं, मम्मी आटा गूंथती हैं तो रोटी बना देती हूँ, सब्जी मम्मी बनाती हैं, बर्तन वर्तन कर देती हूँ, कपड़े
0: ये चीज तो होनी चाहिए।
1: सर्विस करती हैं तो फिर घर का काम करना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल, और क्या, थोड़ा बहुत हाथ बटाना भी चाहिए वैसे भी, है ना? मम्मी अगर घर का काम कर रही, कोई भी कर रहा हो, चाहे बहनें भी कर रही हो या कोई भी कर रहा हो, तो थोड़ा बहुत हम अगर हाथ बटा देते हैं तो थोड़ा काम आसान हो जाता है और लगता है मम्मी को, हाँ मेरी बेटी देखो मेरे काम में हाथ बटाती है। अच्छा बताइए, तो आप आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: जी फिल्म है उस्ताद ही उस्ताद से, और गाना है साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कट जाएंगे।
0: तो चलिए सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हाँ जी मैडम।
0: आज कौन? हाँ जी, कौन सी सहेली से मेरी बात हो रही है पहले ये तो बताइए।
1: मैं मकवाना रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: अच्छा,
1: इंदरपुरा गांव से।
0: तो बताइए रमीला बेन जी कि आप क्या करती हैं?
1: अभी तो मैं घर पे हूँ, मगर अगली बार फोन लगा, बोला मेरे बेटे का बर्थडे है ना, तो मैं बोली गीत सुना।
0: अच्छा अच्छा तो आपके बेटे का बर्थडे आज। तो बहुत
1: हाँ।
0: बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी गुड विशेज हैं हमारी तरफ से, शुभकामनाएं हैं आपके बेटे के लिए। तो रमीला बेन जी, जी बताइए। हाँ
1: बेटी का नाम है आरती जी।
0: हाँ अच्छा, आप ये बताइए कि आपके जो बेटी हैं और बेटे हैं, आपके काम में, आपके घर के काम में थोड़ी बहुत हाथ बटाते हैं कि नहीं?
1: अभी ये लड़की तो मेरी 30 साल की हुई, मगर मन बुद्धि चलती नहीं ऐसी है।
0: अच्छा अच्छा
1: और लड़का है ना, वो तो अभी शादी हो गई, लड़की है, सिटी में रहता है, बड़ोड़ा में।
0: अच्छा अच्छा
1: जॉब करती है लड़की की मम्मी,
0: अच्छा अच्छा
1: और वो लड़का दोनों।
0: ये
1: हाँ,
0: बताइए कि आपको कौन सी फिल्म का और कौन सा गाना सुनना है?
1: मुझे ये दिल का क्या कसूर का, या
0: अच्छा
1: कार्तिक का।
0: अच्छा आपकी पसंदीदा हीरोइन का। तो चलिए, आपकी
1: हाँ
0: पसंद का ये गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, जिला सागर एमपी मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से बात कर रही हूँ, राधिका कुर्मी।
0: तो राधिका जी ये बताइए कि आप करती क्या है।
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं,
0: पढ़ाई करती हैं। कौन सी क्लास में अभी आप?
1: कक्षा 9th में।
0: 9th में, यानी कि आप अभी
1: जी
0: अभी 10th तक पहुंची नहीं है। तो 10th
1: जी
0: की
1: जी
0: तैयारी

0: में, है ना? तो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है?
1: जी दीदी, दीदी हम दिव्यांग है तो दीदी हम लोग संगीत सीखते हैं, तो दीदी वो इसी की तैयारी चल रही है बस दीदी। हम लोग दीदी चित्रकूट में पढ़ते हैं, वो जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी है हमारे गुरु,
0: अच्छा,
1: उन्हीं का एक विद्यालय है दीदी कक्षा 12वीं तक, तो वहीं पे पढ़ते हैं दीदी हम लोग।
0: अच्छा, तो संगीत के अलावा आपके पास और कौन कौन से विषय हैं?
1: हम लोगों को संगीत है, बाकी ये है तो हिंदी है, राजनीति विज्ञान है, विज्ञान है, पर मेन जो हम लोगों के सब्जेक्ट रहते हैं दीदी वहाँ पे ऐसे पढ़ाते हैं, जैसे जिस चीज का मतलब जिन व्यक्ति का जिस चीज में रुचि होती है दीदी,
0: हाँ ये
1: वही
0: तो है।
1: चीज सबसे ज्यादा सिखाते हैं दीदी।
0: अच्छा
1: दीदी, सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी वेद भारती टीम को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दीदी जी।
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी
0: तो
1: दीदी,
0: बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: दीदी मूवी का नाम है दूध का काज
0: और
1: और
0: गाना
1: गाने के बोल है बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, हम कठिना बनो, हम कर्नाटक चिकमंगलूर से।
0: अच्छा अच्छा,
1: सबसे भी सखी सहेली, हेलो सहेली, छाया गीत, वो सब सुनती हमें।
0: अच्छा, आपको किसी चीज से डर लगता है क्या? कोई ऐसी चीज हो जिससे आपको डर लगता हो बहुत ज्यादा?
1: नहीं डर लगता।
0: नहीं
1: क्यों?
0: क्योंकि बहुत सारे लोग, किसी को छिपकली से लगता है, किसी को कॉकरोच से लगता
1: नहीं,
0: है।
1: नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं, नहीं नहीं डरती मैं,
0: नहीं
1: मुझसे भी नहीं डरती, छिपकली से भी नहीं डरती,
0: अरे वाह,
1: किसी से भी नहीं डरती सिवाय अल्लाह के।
0: ये तो बहुत अच्छी बात
1: नहीं,
0: है
1: ना। नहीं नहीं डरती, वो
0: क्योंकि
1: डरते ही, वो बहुत जने डरते हैं।
0: हाँ, क्योंकि कभी सफाई करते हैं ना
1: मुझसे
0: घर
1: भी नहीं
0: में
1: डरती मैं।
0: जी, है ना। तो
1: हाँ,
0: बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं, कौन से फिल्म का?
1: आप तो ऐसे न थे। हाँ, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल
0: अरे
1: है।
0: वाह, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी पसंद है आपकी।
1: शुक्रिया हमारे फरमाइश
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते सहेली
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मेरा नाम शिवाती, गांव गोसगढ़, जिला शामली, उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा, तो आप ये बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं कुछ नहीं, घर पे रहती हूँ, घर का काम करती हूँ।
0: तो ये बताइए, आपके फैमिली में कौन कौन है, परिवार में?
1: जी परिवार में मम्मी, पापा, भैया, भाभी, एक भतीजा।
0: अरे वाह, भतीजे के साथ खेलती हैं आप?
1: हाँ जी, अभी तो स्कूल गया।
0: अच्छा, छोटा है कि थोड़ा बड़ा है? बहुत छोटा है कि
1: नहीं
0: बड़ा है?
1: छोटा, अभी तो छोटा ही है।
0: अच्छा, तो खूब खेलती होंगी फिर तो, मजे आते होंगे ना
1: हाँ जी।
0: भतीजे के साथ में खेलने में। अच्छा ये बताइए, आप किसी चीज से आपको डर लगता है? कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता हो बहुत ज्यादा, एकदम चिल्ला पड़ती हूँ जिसको देख के?
1: छिपकली।
0: छिपकली।
1: हाँ जी,
0: सही बात है ना?
1: हाँ जी। पर भतीजा नहीं डरता है, छोटा सा है पर वो नहीं डरता,
0: हाँ, वो नहीं डरता। अच्छा, तो ये तो
1: वो
0: अच्छी
1: नहीं
0: बात है
1: डरता।
0: फिर तो। आप जब भी आपको डर लगे ना, तो छिपकली या कॉकरोच निकल आए, तो आप उसको बुला लीजिए, अपने भतीजे को कहिए कि पहले तुम इसको हटाओ, फिर हम खेलेंगे।
1: जी वो तो अपने आप आ जाता है, झाड़ू लेके फिर खुद से मारते हैं, लेकिन अब बुआ जी आप कर लो। जी
0: अच्छा, तो बुआ जी ये बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी बेटा, फिल्म का गाना सुनना है, खुशियों का दिन आया है।
0: चलिए सुनाते हैं आपको आपकी
1: जी
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या है और आपके शहर का नाम क्या है।
1: तारीफ कैसे करें आपकी, हर लफ्ज में खुशबू आ रही गुलाब की।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। यानी आपको हमारी बातों में गुलाब की खुशबू आ गई है ना।
1: जी हसीना भी मंसूरी बोल रही मैडम, पालदाना का इंदौर से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हसीना जी। और ये बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैं सिलाई करती हूँ मैडम, जॉब करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा हसीना जी, आप ये बताइए कि आपको ऐसी कोई चीज है जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता हो।
1: नहीं ऐसा तो कोई चीज नहीं मैडम जिससे डर लगे अपने को।
0: आपको
1: अगर
0: नहीं लगता
1: निडर
0: छिपकली
1: रहेंगे
0: से?
1: तो, अगर अपने सामने कभी खतरा भी आएगा निडर रहेंगे तो डर नहीं लगेगा।
0: मेरा मतलब था आपको कभी छिपकली से, मेंढक से
1: छिपकली से तो बहुत डर लगता है मैडम, हर किसी को
0: यही
1: लगता
0: तो
1: है,
0: मैं
1: और
0: पूछना
1: महिलाओं को तो अधिकतर लगता है, कॉकरोच दिख जाएगा उससे भी डर जाती हो तो।
0: वही मैं पूछना चाह रही थी कि आपको इन सब चीजों से डर लगता है कि नहीं, जो अधिकतर लोगों को लगता है।
1: लगता है ना मैडम, छिपकली ऐसे घर में दिख जाती है तो अपने को लगता है कि अपने ऊपर ही नहीं आ जाए एकदम।
0: बिल्कुल। तो ऐसा कभी होता है कि कभी आप सफाई कर रही हो और अचानक से छिपकली निकल आए, तो आप क्या करती हैं फिर?
1: सफाई करते ना मैडम अधिकतर तो निकलती है छिपकली, कहीं भी छुपी रहती है वो तो, ऐसे दिखाई नहीं देती, मगर जैसे अपन ने कोई तस्वीर हटाई साफ करने के लिए
0: हाँ
1: तो उसके पीछे तो जरूर रहती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी लगी हुई होती है ना बहुत दिनों से, तो उसको हटाते हुए भी डर लगता है ना कि ऐसा ना हो कि कहीं इसको हम हटाए और इसके पीछे छिपकली हो, है ना, लगता है ना।
1: जी, तो इसके ऐसा करने तो मैडम झाड़ू बड़े वाली रहती है ना जो लंबी वाली, उससे थोड़ा धीरे धीरे धीरे धीरे करके खिड़की के बाहर कर देते हैं उसको।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी करने के लिए थोड़ा सा चाहिए कि भाई इतना आपको निडर होना चाहिए कि छिपकली को आप भगा सकें, क्योंकि जल्दी जाती भी नहीं है, कभी इधर छुप जाती है कभी उधर छुप जाती
1: हाँ
0: है ना।
1: वो जिधर भगा उधर तो जाती नहीं, वापस अपने तरफ ही आती हो।
0: सच में ना, थोड़ी देर के लिए काम जो हम कर रहे होते हैं ना वो भी बंद हो जाता है ना।
1: जी,
0: तो आप ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं अपनी पसंद का?
1: ये फिल्म का नाम है राम बलराम और गाने के बोल हैं, अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हम

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले तो कि आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैम ग्राम कन्यानी घर से कामनी हरवार।
0: अच्छा तो कामिनी जी ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: मैम कुछ नहीं कर रही, पढ़ाई करती हैं मैम।
0: पढ़ाई करती हैं
1: मैम जी कक्षा सातवीं में।
0: अच्छा सेवेंथ में आप, यानी कि अभी तो बहुत मतलब अभी आप टेंथ तक पहुंचने में काफी टाइम है आपको, तो अभी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए आपको कौन से विषय आपको बहुत ज्यादा पसंद है पढ़ने में?
1: मैम जी हमें, मैम जी कुछ नहीं, खाना बनाए बहुत मजा आता है।
0: खाना बनाना अच्छा लगता है। तो अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम जी पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: कौन सी फिल्म का है?
1: सर्वप्रथम मूवी का।
0: यानी कि आपको फिल्में देखने का और गाने सुनने का बहुत शौक है ना?
1: जी मैम।
0: ठीक है तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं अनुराधा शर्मा बोल रही हूँ, जालना महाराष्ट्र से।
0: तो अनुराधा जी बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है सब?
1: हमारी सासू माँ है, सस्ते है, मेरी दो बेटियाँ हैं,
0: अच्छा
1: प्रियंका
0: अच्छा
1: अंकिता।
0: अच्छा तो बेटियां बड़ी हैं कि छोटी?
1: हमारे घर वाले राजेश तिवारी,
0: अच्छा
1: अभी एक कॉलेज जाते है, एक स्कूल जाते है।
0: अच्छा है ना।
1: नन्हे चतुर्थी की शुभकामनाएं आपको,
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही ये
1: आपके रेडियो के प्रोग्राम, हमें बहुत खुशी है, आज 20 साल के बाद फोन लगा।
0: अरे वाह, इतने समय से आप कोशिश कर रही थी।
1: ओ हेलो फरमाई, सुनते हम
0: अच्छा, और कौन
1: आज
0: कौन
1: के
0: से
1: फन का।
0: कार्यक्रम है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: सखी सहेली, हेलो सहेली,
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आपको गीतों वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते हैं कि जिसमें बातचीत होती है वैसे वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते
1: हाँ
0: हैं?
1: बातचीत वाले जा रहा हूँ उसमें।
0: अच्छा, तो आप जैसे सखी सहेली सुनती हैं आपने कहा, तो उसमें जो रेसिपी वगैरह
1: हाँ
0: या इस तरह की चीजें बताई जाती है, तो आप क्या उसको बनाती हैं घर पे?
1: हो, कभी ट्राई कर दे, संडे के दिन आइए आप भी खाने को।
0: और ये तो बताइए आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं?
1: इडली बनाते हम जा,
0: इडली।
1: इडली डोसा।
0: अरे वाह, इडली डोसा। मतलब ये रहता है ना कि एकदम हल्का भी होता है खाने में, सुपाच्य भी होता है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है ना, अच्छा होता है
1: ओ
0: खाने
1: सही
0: में।
1: बात है।
0: ये बताइए कि आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आरती
0: हाँ
1: सुना दिए गणपति बप्पा की।
0: अच्छा, गणपति बप्पा का आपको गीत सुनाते हैं, तो चलिए सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हाँ हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: प्रतापगढ़ गांव है मेरा, बासी जगेश्वर।
0: तो
1: और मेरा नाम रीना देवी मौर्य है।
0: अच्छा, तो रीना देवी जी ये बताइए आप क्या करती हैं।
1: मैम जी, मैं यही सिलाई उलाई से अपन करती हूँ घर पर।
0: अच्छा, तो आप घर से ही काम करती हैं सिलाई का, है ना?
1: हाँ,
0: तो
1: वही से
0: आप क्या क्या
1: अपन
0: सिल लेती हैं, क्या क्या सिलती हैं?
1: ब्लाउज पेटीकोट यही सब सिलती हूँ।
0: अच्छा, तो आप महिलाओं के कपड़े सिल लेती हैं अच्छे तरीके से। तो ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: हम हैं, दो बेटे हैं।
0: अच्छा, तो बेटे छोटे हैं कि बड़े?
1: नहीं मैम जी, एक आरा में पढ़ता है, एक हाई स्कूल में।
0: अच्छा, यानी छोटे ही हैं। पढ़ाई तो अब इस समय काफी अच्छे से करनी पड़ रही होगी क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह भी होंगे, है ना? तो ये बताइए
1: हाँ
0: आपके दोनों बेटे हैं तो क्या बेटे काम में कुछ हाथ बटाते हैं घर के?
1: हाँ मैम जी, एक रहता है दुकान पर रहता है, तो हम अपना काम घर का कर लेते हैं और उसके बाद स्कूल चला जाता है, तो स्कूल से आता है। अभी
0: अच्छा
1: 2 बजे आएगा गया।
0: अच्छा तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब काम में भी हाथ बटाते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, यानी कि सिंसियर हैं बच्चे। तो ये बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आप थोड़ा बहुत खाली समय में होती हैं, तो आप क्या करती हैं?
1: बस मैम जी, अपन यही सिलाई का काम करते हैं, गाना सुनते रहते हैं।
0: गाना सुनती हैं। तो ये बताइए आपको
1: हाँ
0: कौन कौन से, आप जो ये विविध भारती सुनती होंगी तो आपको कौन कौन से इसके कार्यक्रम हैं
1: मैम
0: अच्छे
1: जी, तो
0: लगते हैं?
1: जब समय पा जाते हैं तब अपन मोबाइल पे चला लेते हैं, वही सुनते रहते हैं, सिलाई करते रहते हैं।
0: हाँ, यानी कि आपका जो काम है वो आसान हो जाता है ना करना।
1: हाँ अपन
0: हाँ,
1: काम करते रहते हैं, खाना बनाते हैं तब भी चला लेते हैं, सुनते रहते हैं और अपना सुनते रहते हैं।
0: यही तो खूबी है ना संगीत की और विद भारती की, कि मतलब आपका जो काम है उसको आसान बना देता है ना। आप सुनते रहिए उसको और अपना काम करते रहिए तो पता
1: किसी
0: नहीं
1: से
0: चलता
1: कोई
0: है कि हम
1: नहीं,
0: कितनी देर से
1: अपना
0: काम कर रहे हैं।
1: हाँ अपना गाना सुनते रहो, अपना काम करते रहो। ठीक
0: तो ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं अपने मन का?
1: मैम जी, राजा हिंदुस्तानी का आए हो मेरी जिंदगी में।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा गीत है, तो सुनाती हैं आपको आपकी पसंद का।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम
0: तो बताइए, पहले आप कौन से शहर से बोल रही हैं और आपका खुद का नाम क्या है?
1: जी। मैडम मेरा नाम सीमा सोलंकी है और मैं उज्जैन जिले के गांव ताजपुर से बात कर रही।
0: अच्छा, आप उज्जैन से बोल रही हैं। उज्जैन यानी कि महाकाल की नगरी भी कहा जाता है जिसे, है ना?
1: उज्जैन का गांव है, ताजपुर कैसा है गांव।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात
1: जी
0: है। आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी मैडम, मैं तो खेती बाड़ी का काम करती हूँ।
0: अरे वाह, खेती बाड़ी का काम करती हैं, तो बहुत ही ज्यादा
1: हाँ
0: मेहनत का काम होता है, समझिए, है ना?
1: हाँ बहुत मेहनत का काम होता है।
0: तो मतलब आप सुबह से निकल जाती होंगे, है ना? सुबह जाना होता होगा
1: हाँ,
0: आपको।
1: सुबह से खाना वाना बना के, मतलब है घर से खाना वाना बनाने वाला, और भी दो बेटियां हैं।
0: तो बेटियां बनाती हैं, काम करती हैं घर का?
1: हाँ बेटियां भी मदद करती हैं, और खेत पे आके फिर मजदूर को खाना वाना, उनका चारा निराव पानी करके फिर
0: हाँ,
1: खेत का काम करते हैं।
0: फिर आपको एक चीज होती ना कि वहाँ खेत पे जाकर खाना खाना, सच में ऐसा लगता है ना
1: हाँ खेत
0: सोच
1: पे
0: के।
1: खाना भी खेत पे ही खाते हैं, मतलब दोपहर का खाना जब
0: हाँ
1: भूख लगती है तो फिर दोपहर को वही खा लेते हैं।
0: हाँ तो वहाँ पे आप खेत में अपना खाना लेकर जाती होंगे ना?
1: हाँ खेत पे कुआं है तो उसमें से पानी आने भर के वही खाना खा लेते हैं।
0: वाह, कितना प्रकृति के पास रह रही हैं आप, सोचिए, ये
1: हाँ
0: भाग्य की बात है एकदम, जो प्रकृति के इतना करीब रहने को मिल रहा है आपको। वैसे भी ना खेत पे जाकर, वहां पे खुले में एकदम खुला खेत है, वहां पे सब फसलें लगी हुई हैं वहाँ, है ना?
1: बहुत
0: और
1: अच्छा
0: आप
1: लगता है
0: बैठ के
1: मैम खेत
0: खाना
1: पे
0: खा रहे
1: तो।
0: हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना
1: हाँ ठंडी हवा चल रही है, पेड़ पौधे भी हैं और
0: साथ में
1: फसलें
0: आपका
1: भी।
0: रेडियो सेट भी रखा हुआ है, आपके फोन भी आप सुन रहे
1: हाँ मैं
0: हैं
1: अपने
0: विविध
1: फोन
0: भारती।
1: पे रेडियो भी सुनती हूँ।
0: हाँ, तो
1: हाँ
0: ये
1: लगी
0: बताइए
1: जी
0: कि आपकी बेटियां पढ़ती हैं या?
1: मैडम, पढ़ती है अभी, दोनों कॉलेज कर रही है।
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत
1: तीन
0: अच्छी बात
1: बेटियां हैं
0: है।
1: मेरी, तो तीनों बेटियां अभी, एक एक तो स्कूल कर रही है और दो कॉलेज कर रही है। जी
0: यानी कि घर के काम में हाथ भी बटाती हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी करती हैं।
1: 8 दिन में एक बार कॉलेज जाती है वो।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो बहुत अच्छी बात है, तो पढ़ाई भी करना और साथ में
1: पढ़ाई
0: अपने आप को आप,
1: भी कर रही है और मदद भी करती है। दो
0: नहीं सच में बहुत अच्छी बात है ये।
1: बेटा है उसके
0: तो बेटा कुछ करता
1: पापा।
0: है मदद?
1: हाँ बेटा तो, बेटा भी करता है सुबह शाम, वो भी कॉलेज कर रहा है
0: नहीं,
1: और
0: सही बात है,
1: दुकान भी
0: बच्चों को
1: चलाता है।
0: सिखाना भी चाहिए ये सब चीजें कि आप पढ़ाई भी करो साथ में, थोड़ा सा हाथ भी बटाओ,
1: हाँ
0: तो
1: साथ में
0: उससे
1: थोड़ा बहुत
0: जुड़ाव रहता
1: मदद भी
0: है।
1: करते हैं।
0: बहुत अच्छा रहता है ये।
1: हाँ और उसके पापा तो है नहीं, उसके पापा उसका एक्सीडेंट हो गया तो
0: हाँ,
1: बच्चे ही मदद करते हैं।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है, सब मदद करते हैं बच्चे आपस में। तो ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी मैडम वो चल अकेला मेरा मेला पीछा छोटा साथी, चल अकेला सुनना।
0: तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अकेला।
1: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पलक झपकते ही तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया था और पता ही नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो है 400024662 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर्स एक बार फिर से नोट कर लीजिए 400024662 और मुंबई का STD कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 28607288 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए

0: 8 6 7 0 2 8 8 और मुंबई का एसटीडी कोड है 02 2। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों का कॉल आज नहीं लग पाया वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाइए और अपनी सखियों को अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

नमस्कार। गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है मेरी आवाज में लेखिका नासिरा शर्मा की कहानी दो दीवाने शहर में।

समुंदर पर बारिश हो रही थी, पानी पर पानी की टपकन। श्रुति की देह पर गिरती मूसलाधार बारिश मांसपेशियों में ऐसी तरंग उठा रही थी कि उस राग उस लय को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। क्या पानी को भी ऐसी थिरकन और सिहरन महसूस हो रही है? उसे इस पल शुभम की याद शिद्दत से आ रही थी। उसने वायदा किया था कि इस बार जब बारिश का मौसम आएगा तो वह दोनों उसी तरह वीडियो बनाएंगे जिस तरह फिल्म मंजिल में अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ने भीगते हुए ये गाना बिना गाए ही महसूस किया था। पलकों पे बारिश, बूंदों के साथ उनके गालों पर बहे आंसू भी। उसके दिल पर छाई घटाबन बरसने लगे थे। उसकी आंखों के पनीले पर्दे पर गानों के शब्दों के साथ

0: यादों में खोई श्रुति जब भीगती हुई अपने फ्लैट वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ी तो उसे अपनी तरफ ताज्जुब से भरी कई जोड़ी आंखें घूरती हुई नजर आईं। मुंबई की इस बारिश में जिस एहतियात को लेकर लोग यहां निकलते हैं वह तो उसने ली ही नहीं। न बदन पर रेनकोट, न हाथ में अम्ब्रेला, वह तो बस अपने में खोई हुई थी। साड़ी से टपकते पानी को देखते हुए उसे ख्याल आया कि वह सीढ़ियां तय करे या फिर लिफ्ट का बटन दबाए। उसे खड़ा देखकर गार्ड ने कहा,
1: मैम लिफ्ट से जाइए, पानी तो साफ हो जाएगा।
0: उसका फ्लैट भी तो 14वीं फ्लोर पर था। उसने धन्यवाद भरी नजरों से गार्ड को देखा और लिफ्ट में दाखिल हो गई। फ्लैट लेते हुए उसे मैनेजर का कहा एक जुमला अक्सर याद आता है,
1: मैम आप दिल्ली से हैं, दिल्ली वाला कोई बात यहां नहीं चलेगा, ठीक है ना?
0: शुभम ने फौरन कहा था,
2: जी आप निश्चिंत रहें सर, वैसे तो हम उत्तर प्रदेश से हैं मगर नौकरी के चलते कई शहरों से गुजरना पड़ता है, बस इसीलिए।
0: दोनों को फ्लैट की सख्त जरूरत थी। ऐसी छोटी मोटी बातों को अगर दिल पर लगाकर आदमी हर एक को जवाब देने लगे तो सिवाय एनर्जी वेस्ट के कुछ मिलना नहीं है, इसलिए श्रुति का चौकन्ना होना जरूरी था। अभी यहां आए 6 माह ही गुजरे थे कि शुभम को दुबई का ऑफर आ गया और सैलरी देखकर दोनों ने फैसला लिया कि शुभम को दुबई जाना चाहिए। यदि वहां का वातावरण भाया और श्रुति को भी जॉब करने का चांस मिला तो वो भी दुबई चली जाएगी, वरना शुभम 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करके लौट आएगा। शुभम और श्रुति को लिविंग में रहते हुए 4 साल हुए थे। दोनों पढ़ने दिल्ली आए थे। कोचिंग सेंटर में दोनों की मुलाकात हुई थी। एक फ्लैट किराए पर लेकर 2 स्टूडेंट्स रह रहे थे, उन्हें वो महंगा पड़ रहा था। शुभम को भी किसी परिवार के साथ उनके बाहर वाले कमरे में रहना पड़ता था जहां से कोचिंग सेंटर काफी दूर पड़ता था। खुद खाना पकाना भी पड़ता था और कभी कभी बाजार से भी खाना पड़ता था। घर से आए रुपए भी कम पड़ते थे। बहुत कुछ सोचकर वह उन लड़कों के साथ रहने लगा। खर्च में बचत के साथ आने जाने में जो समय लगता था उसे

थकन भी होती और पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिलता था। कोचिंग सेंटर भी बेसमेंट में था जहां कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। सड़क की तरफ खुलने वाली केवल इतनी जगह भर थी जहां एसी लगा था और उसे भी लेकर अक्सर वहां झिकझिक होती थी। छोटे शहर के आंगन दालान में रहने वाले ये तीनों लड़के ये सोचकर जी जान से मेहनत कर रहे थे कि इसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और बाकी के दिन अच्छे गुजरेंगे। मगर नेट का पेपर आउट होने की खबर से सबके दिल टूट गए। थका हारा शुभम बोझिल मन लिए जब घर लौटा तो माँ बाप पहले ही खबर सुनकर टूट चुके थे, लेकिन ऊपर से हौसला बनाए हुए थे। जमीन बेचना नहीं चाहते थे, मगर उन्हें लगा कि इस बार बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें बाप दादा की बनाई जायदाद से एक और टुकड़ा बेचना पड़ेगा। एक दो दिन शुभम उदास रहा, फिर उसने मन बना लिया कि वह खुद काम करेगा और नेट में बैठने का सारा खर्चा खुद अपनी कमाई से पूरा करेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं कर पाया और पिता ही एक मोटी रकम उसको हर माह भेजते रहे। इस बार शुभम का साथ अलग तरह का रहा। जो फ्लैट किराए पर ज्वाइंट मिला उसमें दो लड़कियां और एक लड़का था। मकान मालकिन अकेली थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। उनमें कुंठा या कड़वाहट नहीं थी, बल्कि वो ममता से भरी हुई थी। सभी को वह इतवार के दिन दोपहर के भोजन पर बुलाती थी और सबकी पसंद का खाना बनवाती थी। उन्हीं में श्रुति भी थी। श्रुति, हाँ श्रुति, बेहद हंसमुख और दिमाग की तेज लड़की। उसका शौक केवल पढ़ना था। दिल्ली में रहकर भी वह दिल्ली जैसी लड़कियों का फैशन नहीं कर पाती थी। वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी हट और विश्वास को देख पिता ने उसे पढ़ने की छूट दे रखी थी। श्रुति अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रही थी, लेकिन हाँ, शुभम के करीब आकर वो बहुत खुश भी थी।

श्रुति खाना पकाते हुए शुभम से बातें कर रही थी और साथ ही उसे खाना पकाने की रेसिपी भी बताती जा रही थी। रात को खाना खाने के बाद श्रुति को पुरानी बातें याद आने लगी और वह बेचैन हो उठी। इस बार ऐसा नहीं हो, मैं सह नहीं पाऊंगी। वह बिस्तर से उठकर टहलने लगी। फिर उसने शुभम को फोन मिलाया। इधर उधर की बातें कर उसने नर्म आवाज में कहा, शुभम सुनो, हमें लिविंग में रहते हुए कई साल होने को आए हैं, तुम्हें नहीं लगता हमको अब शादी कर लेनी चाहिए और फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी कमाने तो दो, कुछ जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी करना मेरे लिए शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, शुभम ने कहा। हाँ वो तो है, तो भी हमारी उम्र भी तो बढ़ रही है और, श्रुति कहती कहती अचानक रुक गई। शुभम बोला, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, मुझ पर भरोसा रखो। हमारे पास अभी अपना मकान भी नहीं है और न ही हम उन खुशकिस्मत जवानों में हैं जिनके माँ बाप दौलतमंद हैं। मैं यहाँ दुबई आया हूँ, बस ये शहर कमाने और बचत के लिए है। हाँ बात तुम्हारी सही है शुभम, मगर मम्मी पापा शादी को लेकर इतना दबाव डाल रही हैं कि मैं उन्हें जवाब देते देते थकती जा रही हूँ और हमारे आपस के रिश्ते की बात भी उनसे कब तक छुपाती रहूंगी, शुभम ने कहा। ये तो सच है, मेरी जॉब भी रह पाती है या नहीं पता नहीं, पता है यहाँ पर भी छटनी शुरू हो गई है और अपने देश में आकर जॉब कब मिलेगी कब नहीं क्या कह सकता हूँ। हाँ यही सोचकर भी मैं परेशान रहती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, यूं दिल छोटा नहीं करते, है ना?

0: फोन रखने के बाद उसे याद आया कि साथ फ्लैट शेयर करने के कारण एक अंडरस्टैंडिंग तो चारों में आ ही गई थी, लेकिन श्रुति और शुभम की सादी दोस्ती धीरे धीरे कर प्रेम में बदल गई। जब दोनों की स्टडी खत्म होकर नौकरी की तलाश शुरू हुई तो उन दोनों को लगा था कि ये तो शिक्षा प्राप्त करने से भी कठिन मरहले से गुजरने वाला मामला है। एक दिन शुभम ने श्रुति से कहा था, सुन मेरी बात ध्यान से सुनना, हम दोनों में से जिसे पहले नौकरी मिलेगी वो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो नौकरी ले लेगा। हमारे बीच जो संबंध है वो वैसा ही रहेगा, इस बात को लेकर हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना श्रुति?
1: हाँ वो तो ठीक है, तब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या?
0: श्रुति ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर कुछ माह तो हमें अलग रहना पड़ेगा ना श्रुति।
1: ठीक है।
0: श्रुति को शुभम की ये बात अच्छी लगती है कि वह किसी भी तरह की स्थिति के आने से पहले उसकी अच्छी बुरी संभावना पर खुलकर बातें कर लेता है, जिससे उसे व्यवहारिक रूप से बरतने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती है। पहले नौकरी श्रुति को मिली, वह बहुत खुश थी, मगर अकेले जाने में उसे पता नहीं क्यों झिझक सी लग रही थी। शुभम को छोड़ने का उसका जरा भी दिल नहीं चाह रहा था। जिस तरह संबंध टूट रहे हैं, वैसी कोई दुर्घटना उसकी जिंदगी का भी हिस्सा यदि बन जाएगी तो वो क्या करेगी? उसे तो सचमुच शुभम से प्यार है, उसके घर वाले भी उसके विवाह को लेकर उस पर

जोर डालते रहते हैं बिना ये जाने हुए कि आज विवाह करने का मतलब जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है। पहले की तरह शादी केवल माँ बाप की कर्तव्य अदायगी नहीं है बल्कि बेटे या बेटी के लिए एक चुनौती जैसी है। कई तरह की जरूरतें हैं, गाड़ी, एमआई, मकान या कमरे का किराया और बहुत कुछ। ये सब जानते हुए भी श्रुति चिंता में डूबी खुद से सवाल करती थी। माना मैंने प्यार को महत्व देने की जगह अरेंज मैरिज पापा और माँ के कहने से कर ली और पति से स्वभाव न मिल पाया तो कितने ही सवालों, समस्याओं और कठिनाइयों से भरी है आज हम युवाओं की जिंदगी। सोचते सोचते चकरा जाती श्रुति। लोकल ट्रेन पर बैठी श्रुति परेशान थी। अंत में उसने फैसला लिया कि वो जॉब तो ज्वाइन कर लेती है और देखती है कि आगे क्या होता है। इधर श्रुति नए जॉब के लिए मुंबई आती है और कुछ माह बाद शुभम को दुबई में नौकरी मिल जाती है और इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर अच्छे दिनों की उम्मीद में फोन पर बात कर लेते हैं।

0: बड़ी बात नहीं थी, मगर दुबई का नाम बड़ा था। शुभम से अपनी लड़की की विवाह करने वाले खुशहाल और दौलतमंद घरानों की लाइन लग गई। छोटे शहरों की मानसिकता विदेश की नौकरी सुनते ही प्रभाव में आ जाती है कि लड़की ऐश करेगी, लंबी चौड़ी तनख्वाह होगी और आरामदायक रहन सहन होगा। शुभम के माँ बाप इस अचानक आई तब्दीली को देखकर चकित थे कि कल तक तो ये लोग जिस शुभम और शुभम के परिवार की तरफ आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते थे, आज सभी चीजों का ऑफर था। बीए पास लड़की, उसके दहेज में मोटर और घर, कोई नई बिजनेस में साझेदारी की बात करता। जब शुभम ये सब श्रुति को हंस हंस कर बताता तो श्रुति की जान निकल जाती। उसको लाख भरोसा हो शुभम पर, मगर शुभम को उसके माँ बाप मजबूर भी तो कर सकते हैं अपनी गरीबी और बलिदान का वास्ता देते हुए, कि इसी दिन के लिए ही तो उसे अपना पेट काट काट कर उसको शिक्षा दिलाई और आधी से ज्यादा पुरखों की जमीन बेच उसकी दिल्ली प्रवास की पढ़ाई का खर्च निकाला। कहीं पर जाकर शुभम भी माता पिता की इस कुर्बानी को लेकर भावुक हो उठेगा और अपनी कस्में देकर पिछला भूलने और प्यार को सदा जिंदा रखने की बात कर उसे हालत की पेचीदगी को समझाएगा, तब वो क्या करेगी। विश्व स्तर पर जो युद्धों के कारण आर्थिक मंदी बढ़ रही है, उस स्थिति में रोजगार मिलना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में मां ने कई लड़कों की तस्वीरें श्रुति को भेजी थी। उनके कहने के अनुसार उसने नेट पर चेक किया भी। उसे उन लड़कों का परिवार और नौकरी शुभम से अच्छी स्थिति की लगी, जो देखने में भी शुभम से ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे, मगर प्यार, प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं भा रहा था। उसने अपने मन की उलझन अपनी दोस्त रेखा को बताई तो वह पहले गंभीरता से उसकी परेशानी सुनती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, सुन सखी, ये प्यार नहीं केवल आकर्षण है, कल ये दम तोड़ देगा। हाँ, अरे इतने वर्ष तुम दोनों साथ में रहे, जो जीना था वह तुमने जी लिया, आगे जादू नहीं यथार्थ होगा। जीवन की ठोस सच्चाइयां हमारा समय ठहरने का नहीं चलने का है, समझी तुम। श्रुति ये सब सुनकर अचकचा गई, बोली, देखा तुम कहना क्या चाह रही हो। अरे छोड़ शुभम को और आगे बढ़, देख रही है तीनों ऑफर कितने बढ़िया हैं। जो उसे दिल ना मिला और शुभम के लिए मन बेचैन रहा, तो एक जॉब से दूसरी जॉब हम छोड़ते पकड़ते हैं, रोज नए रेस्टोरेंट में लंच लेते हैं, फिर फिक्स लाइफ तुमने जी ली एक अच्छे इंसान के साथ इतने साल, तुम्हें क्या पता कि इनमें से जिससे शादी करो वो शुभम से भी बेहतर हो और शुभम को तुमसे बेहतर लड़की मिल जाए, क्या पता। रेखा की बात सुन श्रुति सन्नाटे में आ गई। उसने चकित हो रेखा को देखा और नजरें झुका ली। क्या सोच रही हो, रेखा हंसने लगी, जो शादी के बाद पति से बेहतर कोई मिल गया तो अब तब की तब देखी जाएगी, अगर हम तब तक जिंदा बचे। अजीब बात कर रही हो, अजीब तो ये समय है जिसमें हम जी रहे हैं। हर तरफ आग लग रही है, सड़क धंस रही है, पुल टूट रहे हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, तो फिर इंसान कैसे इन आपदाओं के प्रभाव से बचा रहेगा, इंसानी जिजी विशा। वही तो मैं कह रही हूँ, समय के साथ चलो, जो बेहतर लगे उसे अपना लो, छूटे को भूल जाओ, रेखा ने कहा। ये सच कुछ लोगों का हो सकता है, मगर सबका नहीं रेखा, मेरा तो कतई नहीं।
1: तो फिर जो जैसा है उस पर सवाल क्यों, रेखा ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा और लैपटॉप पर झुक गई।
0: उसकी बातों का असर श्रुति पर यह पड़ा कि उसके जहन के जाले साफ हो गए और वह तय करके अपनी सीट पर से उठी कि जो सामने आएगा उसका इंतजार करना ही अच्छा रहेगा और दूसरों की राय और जिंदगी को देखकर कोई फैसला लेना बेवकूफी होगा। ये सोचकर वो एक गहरी सांस छोड़ती है।

पता नहीं नक्षत्रों का कमाल था या अपने अंदर उमड़ते प्रश्नों का हल ढूंढने का समय था। शुभम पर शादी का जोर बढ़ा तो उसने माँ को मन की बात फोन पर बता ही दी कि मेरी पसंद की एक लड़की है, मैं उसे पिछले 5 वर्ष से जान रहा हूँ, वो हमारे परिवार में रचने और बसने के लायक है माँ। माँ कुछ बोली नहीं, चुप्पी साध गई, मगर फोन काटा नहीं। शुभम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं इतना कमा लूंगा माँ और तब मेरे लिए कार, बंगला, खेत, बाग खरीदना कोई कठिन काम नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि लड़की तुम्हारी पसंद की बहू बनकर घर आए तो मैं राजी हूँ माँ, लेकिन ये बता देता हूँ कि मैं दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। हाँ, और सुनो माँ, मैं श्रुति का चित्र तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा। माँ की सुस्त सी आवाज जब शुभम को पड़ी तो उसने प्रणाम कर फोन काट दिया और आराम से कुर्सी पर कुछ इस तरह हल्का होकर बैठा जैसे दिल और दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो।

0: शुभम बोझ से आजाद हो गया था, मगर श्रुति अभी भावना और व्यवहारिक यथार्थ में जहनी तौर पर उलझी हुई थी। शायद इसलिए भी कि जब वो लिविंग में रह रहे हैं तो फिर रजिस्टर्ड मैरिज करने में झिझक कैसी, उसके बाद भी तो साथ फेरे लिए जा सकते हैं जब दोनों के माँ बाप इस विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। कम से कम इस टेंशन से तो मुझे निजात मिल जाएगी, खुद से वो लंबे लंबे संवाद करती, परंतु जब शुभम से बात करती तो उसके सारे प्रश्न उसके प्रेम भरे संबोधन से पिघल जाते थे। पिछले 3-4 दिनों से वह हिम्मत जमा कर रही थी कि माँ से बता दे कि उसकी पसंद का लड़का है और वह उसी से विवाह करेगी, वरना जीवन भर कुंवारी रहेगी। शाम को जब माँ का फोन आया कि वह दिवाली की छुट्टियों में आ जाती ताकि लड़के वाले उसे देख लेते और वह भी लड़के से मिल लेती, ये बात सुनकर अचानक श्रुति के मुंह से पहले का सोचा हुआ वाक्य निकल गया। माँ को सदमा सा लगा और गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ कड़वा कह दिया, जिसे सुनकर पहले श्रुति चुप रही, मगर जब माँ ने ये कहा, ये शादी नहीं हो सकती और तुम भी फौरन नौकरी छोड़कर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हें लेने भेज रही हूँ, तब श्रुति ने तेज आवाज में कहा, क्यों माँ, दोनों भाइयों ने प्रेम विवाह किया है तो फिर मुझ पर प्रतिबंध क्यों लगा रही हो, बोलो माँ, शायद तुम भूल चुकी हो कि मुझको कानून ने इजाजत दे रखी है, मेरी उम्र को मत भूलना तुम। माँ ने फोन गुस्से से पटक दिया। श्रुति की सांसें तेजी से चलने लगी और वह बड़बड़ा उठी, बचपन से माँ मुझे कभी भाइयों को तो कभी पिता के आतंक से धमकाती रहती, पर अब और कुछ नहीं। उसने तूफान को पार कर लिया था, भावनाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था, क्रोध आंसुओं में ढल गया और ठीक उसी तरह वह सुबक सुबक कर रोने लगी जब माँ उस पर पहरे पिटाती थी।
1: अब और नहीं होगा माँ,
0: दो दिन तक उसने किसी को फोन नहीं किया। तीसरे दिन अचानक शुभम का मैसेज आया, सरप्राइज, मेरी तरक्की के साथ मेरा प्रमोशन भी हो गया है और मैं फैमिली साथ रख सकता हूँ श्रुति। मैसेज पढ़कर श्रुति खुश हुई और जवाब लिखने ही जा रही थी कि उसके ईमेल और व्हाट्सएप पर हवाई टिकट की डिटेल भी आ गई। पढ़कर चकरा गई, समझ नहीं पाई, तभी फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर शुभम का हंसता हुआ चेहरा उभरा, हाय, तैयार रहो, मैं लेने आ रहा हूँ, यहाँ 3 दिनों की छुट्टी है, तुम स्कूल से छुट्टी ले लो, छुट्टी न मिले तो स्कूल से रिजाइन कर दो। हाँ, हमारा यहाँ फ्लैट बेहद खूबसूरत और आरामदायक है, ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ तुमसे। फोन बंद हो गया और श्रुति समझ नहीं पाई कि ये सब सुनकर कैसे रिएक्ट करे। उसने टिकटों की तारीख देखी, शुभम के आने की तारीख कल की थी और उन दोनों की उड़ान की परसों दोपहर की थी। श्रुति के बदन से तनाव अपनी जगह छोड़ रहा था और आराम उसकी मांसपेशियों को थपक रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, वो भी अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी मुश्किल के। ये सोचते हुए वो मन ही मन बहुत खुश हुई।
2: दो दीवाने शहर में।

शुभम जब फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, आंखों में चमक थी। श्रुति को सीने से लगा हुआ बोला, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है श्रुति। हाँ, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है ना श्रुति? बाहर बादल घिरे हुए थे, मुंबई की बारिश का मौसम। उठो, चलो उठो, बाहर चलते हैं, शुभम ने कहा। अरे अभी बाहर? अरे अभी तो पैकिंग बाकी है, श्रुति ने कहा। चलो ना, चलो तो श्रुति। दोनों फुहारों में भीगते समंदर के किनारे पहुंचे। जी भरकर नहा लो, दुबई में बारिश नहीं होती है, शुभम ने कहा। और श्रुति के मन पर छाए बादल अचानक बरस पड़े और दोनों हंसने लगे।

गीतों भरी कहानी में अभी आप सुन रहे थे जानी मनी लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी कहानी दो दीवाने शहर में। वाचक स्वर था मेरा यानी मंदाकिनी जोशी का। संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ।
4: अब
3: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-1178000 पर।

रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने वोटर लिस्ट की नज़रसानी के अमल का जायज़ा लेने के लिए विकराबाद ज़िले के इलाके तांडूर में कई पोलिंग स्टेशनों का मुआयना किया। उन्होंने वोटर रजिस्ट्रेशन और तस्दीक का काम करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स के काम की निगरानी की। सुदर्शन रेड्डी ने नोट किया कि विकराबाद ने नोटिस की तकसीम में 72% कामयाबी हासिल की है, जो कि 60% की रियासती औसत से ज़्यादा है। अहल शहरियों को ऑनलाइन या मुकामी अफसरान के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवाने की तरकीब देते हुए CEO सुदर्शन रेड्डी ने कहा, हुकाम को हिदायत की कि वो रजिस्ट्रेशन के अमल को हमवार और परेशानी से पाक बनाएं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्ज़ाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन जैसे जमहूरी इदारों पर सिर्फ तब ही एतमाद होता है जब कांग्रेस जीतती है। किशन रेड्डी ने जोर देकर कहा कि अवामी राय की असल चोरी तो वो है जो कांग्रेस तेलंगाना में सियासी वफादारियां तब्दील करवा कर अरकान को तोड़कर कर रही है, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरजनिश की है। केरला, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल के इंतखाबी नतज का हवाला देते हुए जहाँ वोटर लिस्टों में नजरसानी के बावजूद अपोजिशन पार्टियां कामयाब हुई, किशन रेड्डी ने कहा कि आईनी इदारों और वोटरों पर राहुल गांधी का हमला महज मायूसी का नतीजा है। उन्होंने राहुल गांधी को मशवरा दिया कि वो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने के बजाय सियासी शाइस्तगी का मुजाहरा करें और हिंदुस्तान के इंतखाबी निज़ाम का एहतराम करें। ये खबरें आप आकाशवाणी हैदराबाद से सुन रहे हैं। TPCC के सदर बी महेश कुमार गौड़ ने 9 अक्टूबर को होने वाले RTC यूनियन की शिनाख्त के इंतखाबात में अपनी मुंसलिक तंजीम तेलंगाना RTC वर्कर्स यूनियन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने मुकामी लीडरों को हिदायत की कि वो दीगर यूनियनों की हौसला अफजाई ना करें और साबिक मेयर बोंतुरा मोहन को इंतखाबी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। साबिक वजीर हरीश राव ने आबपाशी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी को खत लिखकर मुतालबा किया कि गोदावरी के सैलाबी पानी को मल्लाना सागर, रंगनायक सागर और कुंडापोचम्मा सागर जैसे अहम आबी ज़खायर में मुंतकिल करने के लिए पंप्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की गफलत पर तनकीद करते हुए खबरदार किया कि आबी ज़खायर के खुश्क होने से पीने के पानी 5 लाख एकड़ अराजी पर खड़ी फसलों और नरमेटा के पाम ऑयल फैक्ट्री जैसी मुकामी सनअतों को खतरा लाहक है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला बंडी संजय कुमार ने चेन्नई में BSF सेक्टर हेडक्वार्टर्स में 30 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की नई इंतजामी और रिहायशी इमारतों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि BSF कौमी दिफा में कलीदी किरदार अदा करती है और मोदी हुकूमत हमारे बहादुर जवानों के लिए जदीद बुनियादी ढांचा फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना BJP के रियासती सदर N रामचंद्र राव ने ऑस्ट्रेलिया में टूवुम्बा के मेयर जेफ मैकडोनल्ड से मुलाकात की। इस मौके पर आर्मोर के MLA राकेश रेड्डी, मेडचल के MLA मला रेड्डी और मुकामी हिंदुस्तानी बरादरी के लीडर्स भी मौजूद थे। वफ्द ने टूवुम्बा की तरक्की, वहाँ मुखीम हिंदुस्तानी की बढ़ती हुई तादाद और शहर के समाजी व इकतसादी ढांचे में उनके किरदार पर तबादले ख्याल किया। रियासती वजीर दामोदर राजन नरसिम्हा ने सेहत की देखभाल के निज़ाम को मजबूत बनाने में डॉक्टरों और नर्सेस के साथ साथ फार्मासिस्ट के अहम किरदार पर रोशनी डाली। आलमियों में फार्मासिस्ट के मौके पर उन्होंने अद्वियात की महफूज तकसीम और मुनासिब खुराक के बारे में आगाही को यकीनी बनाने में फार्मासिस्ट की खिदमात की सताइश की। पटनजेरू के MLA जी माहिपल रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड कारपोरेट सतह पर तबी सहूलियात हासिल करने वाले गरीब खानदानों को ज़रूरी माली इमदाद फराहम करता है। उन्होंने मुकामी रहनुमाओं बशमूल मार्केट कमेटी के साबिक चेयरमैन विजय और इस्लामपुर म्यूनसिपल चेयरमैन श्रीकांत की मौजूदगी में अपने पटनचेरू कैंप ऑफिस में 83 मुस्तहकीन में 35 लाख रुपये मालियत के CMRF चेक तकसीम किए। नारायणपेट का इलाका हुबुल वतनी के जज्बे से सरशार हो गया जब वहाँ के ज़िला मरकज़ में वाक़ सेंट्रल चौक पर वंदे मातरम गाने की एक बड़ी तकरीब मुनाकिद हुई।
रुकन पार्लियामेंट डी के अरुणा ने बतौर मेहमानी खसूसी आवाम के साथ मिलकर कौमी गीत गाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वंदे मातरम के 150 साल

0: उन्होंने पर मुल्क भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का बैक वक्त ये गीत गाना एक तारीखी संगे मील है। आखिर में बुलेटिन की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। हैदराबाद में गणेश विसर्जन का अमल बड़े पैमाने पर जारी है। हजारों गणेश की मूर्तियां हुसैन सागर और दीगर मुकर्रर मुकामात की जानिब ले जाई जा रही हैं। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहकाम जारी होंगे, हुकाम खैरताबाद ज़िमनी इंतखाब करवाने के लिए तैयार हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जाम की शदीद मजम्मत की और कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में सियासी वफादारियां तब्दील करवाने की हौसला अफजाई करती है। TPCC के सदर बी महेश कुमार गौड़ ने RTC यूनियन इंतखाबात में अपनी मुंसलिक तंजीम तेलंगाना RTC वर्कर्स यूनियन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। आकाशवाणी हैदराबाद से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियां और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, ITI प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कर्नाटक से मालदीव के लिए GI टैग वाली गुलबर्गा तुअर दाल की 1 मीट्रिक टन खेप को रवाना किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के GI टैग वाले कृषि उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करना है। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर

पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत

70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। बचपन और टीनेज उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से हर किसी के साथ होते हैं, वही कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो आसपास के माहौल, वातावरण आदि की वजह से बच्चों में नजर आने लगते हैं। आज के दौर में कम उम्र के बच्चे में भी स्कूल, पढ़ाई और बिगड़ते माहौल की वजह से स्ट्रेस देखा जाता है। आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों में भी आसपास के माहौल, परिवार की उदासीनता, लड़ाई झगड़े और हिंसा के चलते मानसिक रोग नजर आने लगे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को हंसी खुशी के माहौल में रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखना रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं के ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को देखा समझा और उनका इलाज नहीं किया गया तो ये बच्चे उम्र भर के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं और इसका समाधान न मिल पाने के चलते अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चलिए आपको बच्चे में पनप रही मानसिक समस्याओं के बारे में और डिटेल में बता दें इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों, कई हैं। एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये नंबर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। दरअसल अडल्ट से जो मानसिक समस्याएं देखी जाती है वो बचपन से ही चली आ रही किसी न किसी मानसिक समस्या का बड़ा हुआ रूप कहा जा सकता है। बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करने वाले कारक उनका परिवार, परिवार में माता पिता के आपसी संबंध, उनके दोस्त, दोस्तों द्वारा उन पर किसी बात के लिए नियमित रूप से प्रेशर डालना, पढ़ाई लिखाई में सफल होने का प्रेशर। कुछ बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक परेशान और अकेला महसूस करते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि वो खुद को किसी न किसी तरह से अन्य लोगों से अलग महसूस करते हैं या महसूस करवाए जाते हैं। अन्य लोगों की तुलना में बच्चे खुद को अलग अक्सर तब महसूस करते हैं जब वह समाज के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार खुद को नहीं पाते। इसमें उनकी सेक्सुअलिटी, क्लास, जाति के आधार पर भेदभाव, परिवार में हिंसा, किसी बड़े का सपोर्ट न होना और हर वक्त बड़ों द्वारा प्रेशर थोपा जाना बड़े कारक साबित हुए हैं। वैसे तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और वो दुनिया में अभी तक जानी और समझी गई किसी भी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी बच्चों में गांव के बच्चों की तुलना में मानसिक रोगों की समस्या अधिक देखी गई है। बच्चों में आमतौर पर ये मानसिक समस्याएं देखी जाती है। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कियों में लड़कों के तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बॉडी इमेज इश्यू की वजह से भी होता है, जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। टीनेज से ही बच्चे में बहुत अधिक खाना या खाना बिल्कुल छोड़ देने की कंडीशन देखी जाती है। बहुत से बच्चों में युवावस्था से पहले यानी टीनेज से ही पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। उनका बहुत अधिक गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, खींच जाना, मारपीट आदि करना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ही लक्षण कहे जाते हैं। ये बेहद कॉमन मानसिक समस्या है जहां कम उम्र से ही स्ट्रेस के चलते बच्चों का मूड और व्यवहार बदल जाता है। कभी वो बहुत उदास हो सकते हैं तो कभी वो बहुत हाइपर एक्साइटेड नजर आते हैं। डिप्रेशन, उदासी, नाराजगी और बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है जो बच्चों में बेहद आम तौर पर देखे जाते हैं। बहुत से बच्चों को

0: सोशल एंजाइटी होती है, तो वही बहुत को तरह तरह के डर घेरने लगते हैं। टीनेज में अभी ये डर बहुत खुलकर सामने आया है, लेकिन पढ़ाई, करियर या किसी खास मामले में ये डर खुलकर बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है। एडिक्शन या नशा भी एक मानसिक समस्या है, जिसके चलते एक बच्चा कम उम्र में ही शराब, सिगरेट या ड्रग का आदी हो जाता है। इस उम्र में उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और यही वजह है कि अल्कोहल और ड्रग उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। फ्रेंड्स, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, कहीं आपका बच्चा किसी मानसिक समस्या से जूझ तो नहीं रहा है। ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लक्षणों और हरकतों पर नजर रखें, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किसी मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। ये लक्षण समझ में आने पर आप अपने बच्चों को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं, जहां टॉक थेरेपी या किसी अन्य प्रकार के मेंटल हेल्थ थेरेपी से बच्चों को अपनी समस्या से निजात मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं आपको अपने बच्चों के किन लक्षणों पर नजर रखनी है। अगर आपके बच्चों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं, तो आपको तुरंत किसी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। जैसे बहुत अधिक थकान, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सोना, भूख न लगना, हर वक्त निराश महसूस करना, एकाग्रता की कमी, दिल की भावना बढ़ने लगना, सुसाइडल महसूस करना, उदास, खाली या घबराहट महसूस करना। बचाव और इलाज यह है दोस्तों कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनका परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहा है, तो उसकी सही इलाज करवाई जाना बेहद जरूरी है। टीनेज वैसे ही अपने आप में एक बेहद मुश्किल दौर होता है, ऊपर से मानसिक समस्याएं इसे और भी चैलेंज बना सकती है। इसीलिए परिवार को अपने बच्चे के प्रति बहुत उदार होना चाहिए और उसे खूब प्यार देना चाहिए। जब बच्चा महसूस करता है कि परिवार से प्यार, अपनापन मिल रहा है, तो उसे अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के प्रेशर के तले दबता जा रहा है और इसकी वजह से लगातार घबराहट, डर और निराशा महसूस कर रहा है, तो उस पर बेवजह टॉप करने का दबाव न डाले। हर बच्चे की क्षमताओं और काबिलियत अलग अलग होती है। दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे या कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर के झपेट में आए, तो समस्या को समझकर उसकी मुश्किल आसान करने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार दे और उसे ये यकीन दिलाए कि वह जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा। उस पर किसी भी तरह का अनरियलिस्टिक प्रेशर न डाले। नियमित रूप से उसे बात करते रहे, ताकि अगर उसके मन में कोई भी उलझन हो तो वो खुलकर आपको बता सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्टोरीज के लिए सुनते रहिए लम्हे विद चेतन। आज के लिए बस इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक चेतन को इजाजत दीजिए, नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: Lamhe Prayashita Karyakramam Mirintavarku Vinnaru Akashavani Vivida Bharati Kendram Nilayamlo Samayam 6 Gantala 50 Nimshalu Super Hit Songs Vindam. చిన్న కథ కాదు చిత్రం నుండి ప్రకాష్ కుమార్ గానం చేసిన ఈ పాట మీకోసం.

0: అంగనిధి అందాన నిధి అందగనే సందేళక
1: సినీ గీతాలు మీరింతవరకు విన్నారు. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం సమయం 9:15 కావస్తుంది. ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు కొద్ది క్షణాల్లో.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देही इलाकों में तब्दीली और ख़वातीन का खुद कफील होना भारत की तरक्की की अलामत है. वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी इस्लाहात और मुस्बत तब्दीली की अहमियत को उजागर किया. मरकज ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरिश ज़दा इलाकों में AFSPA को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा में बामानी इस्लाहात को यकीनी बनाने के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात पर जोर दिया है. उन्होंने तब्दीली की मुखालफत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया. और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के तमगों की मजमू तादाद 23 हो गई है. इसमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं. कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड 10 मीटर के एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है. तवील फास्ते तक दौड़ने वाले खिलाड़ी गुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा हासिल किया है. वहीं बरानिका एलन गोवन ने खवातीन के पोल वॉल्ट में कांसे का तमगा जीता है. अब खबरें तफसील से. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के शहरों और गांवों के दरमियान की दूरी में

0: तनख्वाह कमी आई है। उन्होंने देही बुनियादी ढांचे में नुमाया बेहतरी का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क भर में खवातीन बड़े पैमाने पर खुद कफील और माशी तौर पर बाइख्तियार बन रही हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वड़नगर की यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए आज वजीर आजम ने ये बात कही। जनाब मोदी ने समाजी खिदमत, समाजी इसलाह और मुस्बत तब्दीली की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी की शमूलियत और तआवुन से ही विकसित भारत का ख्वाब पूरा हो सकता है। जनाब मोदी ने वाजे किया कि वड़नगर से उन्हें वो इकदार मिली हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को शक्ल दी है, जबकि काशी ने उन इकदार में अपना रंग भरा है। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि नौजवान अफराद भी खिदमत के इस सफर पर निकले हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं, इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: बातचीत के दौरान यात्रियों ने वजीर आजम से अपने तजुर्बात बयान किए। इस दौरान जनाब मोदी ने यात्रियों को अपने तजुर्बात डायरी में दर्ज करने का मशवरा दिया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि अक्वामे मुत्तहदा में बामानी इस्लाहात के लिए मतन पर मबनी मुजाकिरात जरूरी हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी तहरीरी मतन के बगैर मुजाकिरात जारी रहते हैं तो इसका मकसद सिर्फ वक्त हासिल करना और इस्लाहात के अमल को मजीद मौक्कर करना रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अक्वामे मुत्तहदा में ढांचा जाती इस्लाहात में ताखीर पर दुनिया भर में बढ़ती हुई बेचैनी इस बात की निशानदेही करती है कि इस्लाहात की मुखालफत करने वाले अनासिर अक्वामे मुत्तहदा को मजबूत बनाने की बजाय महज अपने मफादात के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की 81वीं जनरल असेंबली के मौके पर इख्तलाफात और रुकावटें, बदलती हुई दुनिया के लिए फासले मिटाना और पुल की तामीर के उनवान से मुनक़िदा वजारती मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इदारे की पेशरफ्त में रुकावट बनने वाले तरीक़ेकार की मुश्किलात का जिक्र करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि अक्वामे मुत्तहदा के इदारा जाती ढांचे में तब्दीली की इज्तिमाई ख्वाहिश मजीद मजबूत हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने अक्वामे मुत्तहदा में ढांचा जाती इस्लाहात के मुतालबे का दिफा करते हुए कहा कि यह मुतालबा अक्वामे मुत्तहदा के खिलाफ किसी अदावत की वजह से नहीं बल्कि इस इदारे को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश से पैदा हुआ है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की 81वीं जनरल असेंबली के मौके पर अपनी भरपूर सिफारती सरगर्मियां जारी रखीं। डॉक्टर जयशंकर ने आर्मेनिया, बारबाडोस और इराक के अपने हममनसबों के साथ अलग अलग मीटिंगें कीं। इसके अलावा पनामा के सदर से भी उन्होंने मुलाकात की। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने अपनी मीटिंगों की तफसीलात शेयर करते हुए बताया कि बातचीत में दोतरफा तआवुन, इलाकाई हालात व वाकयात और वसी तर बैनुल अक्वामी उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। ये हालिया मीटिंगें अक्वामे मुत्तहदा के जनरल असेंबली के दौरान डॉक्टर जयशंकर की वसी तर सिफारती सरगर्मियों का हिस्सा हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ खितों के रहनुमाओं और वुज़राए खारजा के साथ दोतरफा ताल्लुकात, इलाकाई हालात और कसीर फरीकी ताउन समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजारत खारजा में इकतसादी ताल्लुकात के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने अक्वामे मुत्तहदा की 81वीं जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर कम तरक्की याफ्ता मुल्कों LDCs की सालाना वजारती मीटिंग में शिरकत की। सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत खारजा ने कहा कि मीटिंग के दौरान भारत ने कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ अपनी मुस्तहकम और पायदार शराकत दारी के अज़्म का इआदा किया है। सुधाकर दलेला ने कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की पायदार तरक्की के लिए आसान और काबिल रसाई माली वसाइल, रोजगार के मौके पैदा करने के अलावा घरेलू पैदावार में सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर जोर दिया। सेक्रेटरी मौसूफ ने सेंडाई फ्रेमवर्क पर अमल दरामद, कुदरती आफात और आबोहवा की तब्दीली के असरात से निमटने के लिए आसियान का जामे तरीक़ेकार के उनवान से मुनक़िदा खसूसी प्रोग्राम से भी खिताब किया। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सी बी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की 81वीं जनरल असेंबली के मौके पर समंदर की सतह में इजाफे से कुर्रे अर्ज की बका को लाहक खतरात से निमटने के मौजू पर मुनक़िदा आला सतह के मुकम्मल इजलास में भारत का मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने समंदर की सतह में इजाफे से मुतालिक अक्वामे मुत्तहदा के एलामिये को अपनाए जाने का खैर मकदम किया और समंदर से मुत्तसिल इलाकों को आबोहवा की तब्दीली के खतरात से महफूज बनाने, मैंग्रोव के तहफ़ और कुदरती आफात से महफूज बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए भारत की कोशिशों को उजागर किया। उन्होंने मसावात पर मबनी मुश्तरका लेकिन मुख्तलिफ जिम्मेदारियों और मुतालिका सलाहियतों की अहमियत को भी उजागर किया। जनाब सी बी जॉर्ज ने سمندر کے قانون سے متعلق

0: अक़वामे मुत्तहदा के कन्वेंशन UNCLOs की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि समंदरी हदूद मुस्तहकम रहनी चाहिए और जजीरानुमा और साहिली मुल्कों की मुमलकती हैसियत और खुद मुख्तारी का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। मरकज़ ने मुसल्ह अफवाज के खसूसी अख्तियारात के कानून 1958 को मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरिश ज़दा इलाकों में मजीद 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये फैसला 1 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। मणिपुर में वजारत दाखिला ने 13 पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले इलाकों को छोड़कर तमाम रियासत में AFSPA को नाफिज करने का फैसला किया है। इन ज़िलों में दीमापुर, न्यूलैंड, चिमोई, केडिमा, मोन और मेलुरी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलैंड और लॉन्गडिंग ज़िले और आसाम की सरहद से मुतसिल नमसाई ज़िले में नमसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस स्टेशनों के मातहत इलाकों में भी AFSPA नाफिज किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत गुज़िश्ता 12 साल की हुसूलियाबियों को आज उजागर किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस पहल ने मेड इन इंडिया, भारत में सरमायाकारी और भारत से ज़्यादा बरामदात को फ़रोग दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये तब्दीली सभी शोबों में नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि मेक इन इंडिया का ताल्लुक़ बुनियादी ढांचे, एंटरप्राइज और जिद्दत तराजी से है, जो भारत को फलने फूलने और खुशहाल बनने के काबिल बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज खसूसी सीरीज़ में इस नज़रिए के जरिए दिफाई अमले के सरबराह के अहदे की तश्कील का जायज़ा पेश किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूँ। इस विषय के जो जानकार हैं, वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग कर।
2: इससे पहले भारत के दिफाई अफवाज के 3 शोबे, बर्री अफवाज, बहरिया और फजाइया, अलग अलग मनसूबाबंदी, तरबियत और खरीदारी का अमल अंजाम देते थे और हुकूमत को अलहदा तौर पर मशवरे दिया करते थे। साल 1999 की कारगिल जायजा कमेटी की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा उन्हें मरबूत करने से मुतालिक तजवीजें पेश की जाती रहीं, जिसे वुज़रा के ग्रुप ने भी उठाया। ताहम किसी एक अफसर को तीनों खिदमात को हुक्म देने का इख्तियार नहीं था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को यौम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में लाल किले की फसील से दिफाई अमले के सरबराह CDS के ओहदे की तश्कील का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि इस कदम से तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल में मदद मिलेगी।
1: आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूँ। इस विषय के जो जानकार हैं, वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: इसके बाद दिसंबर 2019 में काबीना ने इस फैसले को मंजूरी दे दी। साथ ही वजारत दिफा के दायरे में ही CDS की सरबराही में फौजी उमूर से मुतालिक नए महकमे की तश्कील को भी मंजूरी दी गई। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS के तकर्र ने हुकूमत के लिए सभी फौजी मामलात पर राबते के लिए वाहिद कड़ी का काम किया।
3: The appointment of the Chief of Defence Staff made it possible for the government to have one point contact for advice on all matters related to military. Besides being the Chief of Defence Staff, he is also Secretary of Military Affairs. He is a one point contact, one point advisor to the Defence Minister, and of course in the security meet, whenever the Prime Minister wishes to, the Defence Minister wishes to, at any point of time they require advice, they need some kind of input, just one point contact for all the three services, and that is the Chief of Defence. So this coordination, this kind of thing has made it so much simpler for all the three services and he's a four-star general. He's one amongst the equal.
2: CDS के उदय की तश्कील के बाद अब तीनों अफवाज को आला सतह पर मौसर क्यादत मिल गई है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी के कौमी सदर और राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट नितिन नबीन ने कहा है कि बीजेपी की पॉलिसी हमेशा अंत्योदय यानी सफे आखिर में खड़े शख्स तक तरक्की के फायदे पहुंचाने से तहरीक पाती है। उन्होंने कहा कि किसी जज्बे के तहत गांवों और कस्बों तक तरक्याती स्कीम

कार्यक्रमों की तौसी की जा रही है। जयपुर के नजदीक दादिया में मुनक्किद सेवा संकल्प सभा से खिताब करते हुए आज उन्होंने ये बात कही। जनाब नवीन ने कहा कि सफे आखिर में खड़े शख्स तक तरक्याती स्कीमों की यकीनी फरहमी में अवामी नुमाइंदों को अहम रोल अदा करना होता है। जनाब नवीन ने कहा कि अवामी नुमाइंदों का असल मकसद तब पूरा होता है जब वो खुशी और गम के मौके पर अवाम के साथ खड़े होते हैं। इसके बाद जनाब नवीन ने बिरला ऑडिटोरियम में नौजवानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जनाब नवीन ने नौजवानों से तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में कायदाना रोल अदा करने की अपील की। अमरीका और ईरान अपने दरमियान जारी तनाज़ ख़त्म करने के लिए मरहलेवार तरीक़े कार पर गौर कर रहे हैं। ईरान ने तजवीज़ पेश की है कि अगर अमरीका अपनी नाकाबंदी और दीगर इक्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म कर दे तो ईरान आबनाए हुरमुज़ को दोबारा खोल सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराकची ने कहा कि तेहरान ने सालिसी करने वालों के ज़रिए एक तजवीज़ पेश की है जिसके तहत ईरान अपनी शरायत पूरी होने की सूरत में आबनाए हुरमुज़ को दोबारा खोल देगा। इन शरायत में 7 दिन के अंदर तमाम महाजों पर जंगबंदी, ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली और तेल पर आयद पाबंदियों में रियायत शामिल हैं। इस दौरान एक अमरीकी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने भी कहा कि ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने के लिए तैयार है और वो मजीद लड़ाई जारी रखना नहीं चाहता है। एशियाई खेलों में जापान के नागोया में भारत ने कुल 23 तमगे जीते हैं। इनमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी ने सोने का तमगा जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने 484.6 निशाने लगाए और 6.6 पॉइंट्स के साथ जुनूबी कोरिया की जोड़ी से आगे रहे। इस दौरान एशियाई खेलों में मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के खिलाड़ी गुलवीर सिंह ने चांदी का तमगा जीता है। वहीं खवातीन के पोल वॉल्ट में भारतीय एथलीट बारानिका एलन गोवन ने कांसे का तमगा जीता। इसी तरह खवातीन के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने भी कांसे का तमगा अपने नाम किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देही इलाकों में तब्दीली और खवातीन का खुद कफील होना भारत की तरक्की की अलामत है। वजीर आजम ने समाजी इस्लाहात और मुस्बत तब्दीली की अहमियत को उजागर किया। मरकज ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरी ज्यादा इलाकों में AFSPA को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक्वामे मुत्तहिदा में बामानी इस्लाहात को यकीनी बनाने के लिए मतन पर मबनी मुजाकरात पर जोर दिया है। उन्होंने तब्दीली की मुखालफत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के तमगों की मजमू तादाद 23 हो गई है। इनमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट द फन।
0: दोस्तों आज के प्रोग्राम में फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक एस पी बाल सुब्रमण्यम।

1981 की फिल्म एक दूजे के लिए अपने सुपरहिट गीत और संगीत के लिए भी जानी जाती है। इस फिल्म के गानों में अपनी आवाज देकर एसपी बाल सुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए अपना दूसरा नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इसके पहले 1980 में एसपी बाल सुब्रमण्यम को डायरेक्टर के विश्वनाथ निर्देशित तेलुगु फिल्म शंकरा भरणम के लिए भी अपने बेहतरीन गायन के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पहला नेशनल अवार्ड मिल चुका था और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर सिंगर ख्याति पा चुके थे।

4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मूलापेटा में जन्मे एसपी बाल सुब्रमण्यम का परिवेश पूरी तरह से संगीतमय था। उनके पिता एक हरी कथा कलाकार थे और उन्होंने कई मंचित नाटकों में भी काम किया था। एसपी बाल सुब्रमण्यम की बचपन से ही संगीत में रुचि थी। यही वजह थी कि उन्होंने छोटी उम्र में ही हारमोनियम और बांसुरी बजाना सीख लिया था। हालांकि इंजीनियर बनने की चाहत में एसपी बाल सुब्रमण्यम ने अनंतपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया, लेकिन स्टडी के दौरान बीमारी की वजह से रुकावट भी आई, मगर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और इसी दौरान 1964 में एक सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेकर अवार्ड भी जीता।

गायन का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर एसपी बाल सुब्रमण्यम प्रोत्साहित होते रहे, आगे बढ़ते रहे और बाद में एक लाइट म्यूजिक ट्रुप के प्रमुख गायक बन गए। उस दौरान गिटार और बाद में

दोस्तों एसपी बाल सुब्रमण्यम की फिल्मों में गायन की शुरुआत 15 दिसंबर 1966 में एक तेलुगु फिल्म से हुई। ये फिल्म थी श्री श्री श्री मर्यादा रामन्ना। उसके चंद दिनों बाद 1966 में ही कन्नड़ फिल्मों के लिए और 1969 में तमिल फिल्मों के लिए भी अपने गायन की शुरुआत करके एसपी बाल सुब्रमण्यम चर्चा में आ गए। अपने दौर के दिग्गज कलाकारों जैसे जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन की आवाज बनकर उभरे। एसपी बाल सुब्रमण्यम को जी देवराजन ने मलयालम फिल्मों के लिए भी गायन के लिए इंट्रोड्यूस किया। एसपी बाल सुब्रमण्यम उन दिनों साउथ में अपने गायन के चरम पर थे। व्यस्तता का आलम यह था दोस्तों कि 1981 में 8 फरवरी को 12 घंटे की अवधि में कन्नड़ भाषा में 21 गाने गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बाद में तमिल में एक दिन में 19 और हिंदी में भी 16 गीत एक ही दिन में गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया।

उस दौर की साउथ की जानी मानी फीमेल सिंगर्स जैसे पी सुशीला, एस जानकी, वाणी जयराम और एल आर ईश्वरी के साथ भी एस पी बाल सुब्रमण्यम की बेहतरीन ट्यूनिंग रही और उन्होंने तमाम युगल गीत गाए। आगे चलकर महान संगीतकार बने इलैया राजा के साथ एस पी बाल सुब्रमण्यम का जुड़ाव बहुत पहले से रहा है, जब इलैया राजा उनके ऑर्केस्ट्रा ट्रुप में महज हारमोनियम और गिटार वादन किया करते थे। उनका ये जुड़ाव बाद में बना रहा और कई गीतों को रचकर और भी पक्का हो गया। 1989 में एसपी बाल सुब्रमण्यम ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अपनी आवाज दी। फिल्म थी मैंने प्यार किया। फिल्म के साथ साथ गानों ने भी धूम मचा दी थी। इस फिल्म के दिल दीवाना गाने के लिए एसपी बाल सुब्रमण्यम को फिल्म फेयर के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

बाद में सलमान खान के लिए ही एसपी बालसुब्रमण्यम ने हम आपके हैं कौन फिल्म के गाने गाए, जो सुपर डुपर गीतों की श्रेणी में शामिल हो गए।

दोस्तों यहाँ काबिले जिक्र है कि एस पी बाल सुब्रमण्यम को कई लोग बतौर गायक ही जानते हैं, जबकि वो एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वॉइस एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, के भाग्यराज, मोहन, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड, जेमिनी गणेशन, अर्जुन सरजा, नागेश, कार्तिक, रघुवरन जैसे हिंदी और साउथ के तमाम कला

कलाकारों के लिए साउथ की विभिन्न भाषाओं में वॉइसिंग भी कर चुके हैं एसपी बालसुब्रमण्यम। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गीत गाने वाले एसपी बालसुब्रमण्यम को अब तक 6 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एक दिन में अधिकतम गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से तेलुगु सिनेमा का नंदी अवार्ड्स लगभग उन्हें 25 बार हासिल हो चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के और भी कई अवार्ड्स हासिल कर चुके एसपी बालसुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा सन 2001 में पद्मश्री और सन 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन एसपी बालसुब्रमण्यम अपने सबसे बड़े अवार्ड को मानते हैं अपने प्रशंसकों की गुनगुनाहट के जरिए, वो जो उनके गीत गुनगुनाकर खुशियों में डूबे रहते हैं।

दोस्तों, एसपी बाल सुब्रमण्यम एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। उनकी पत्नी हैं श्रीमती सावित्री, एक बेटी है पल्लवी और एक बेटा है एसपीबी चरण, जो खुद भी पार्श्व गायक और फिल्म प्रोड्यूसर है। एसपी बाल सुब्रमण्यम ने फिर से एक बार हिंदी की ओर शुरुआत की 2013 में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए भी पार्श्व गायन करके। संगीतकार विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में उन्होंने ये गीत गाया।

0: प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, और अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।